0: this station had linked people from all wrong, you know. Remember Navin from Monrepo? I remember Avinash from Chatumago. What about them Glasgow boy from Glasgow, Hozororo, Isano, and Mokomoko? You got to call everybody, man. This is one big thing.
1: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए।
2: नंबर वन मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली। इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुलगुलु ग्लोरिया। दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।